आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस हैं। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

दिखती हैं ईंटे, देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस।

हमें नहीं पता तंग कितनी वो रोड थी। घर वो जहाँ पे बस एक ही कमरा था, वहीं पे रसोई थी, वहीं पे था टॉयलेट। तुमने देखा मेरा स्टेज पे चिल्लाना, तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से।

WMCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

गाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल।

0: एक हो गए हम और तुम,
1: हम हम हम
0: तो उड़ गई निंदेरे
2: रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग संग बाय जुबिन नौटियाल शाशा तिरुपति कंपोज्ड बाय एआर रहमान रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क एंड रिटन बाय महबूब

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये

हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ट्रम्प का एसी पका लोकल ऑन 99.9 FM HD4, 101.9 FM 4090 AM, आप सभी का स्वागत है जरा मुस्कुराओ में। यस, द वीकेंड इज हियर। यस, वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट कि इस वीकेंड को क्या हो रहा है, मतलब आजू बाजू क्या चलने वाला है, एंड ऑल्सो हाउ द वेदर इज एग्जैक्टली। आई मीन बारिश चल रही थी, स्टॉर्म्स आए थे, बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, पावर आउटेजेस, फ्लैश फ्लडिंग, सब कुछ हमने देखा। एंड अब ओवर द वीकेंड वेदर एग्जैक्टली कैसा है, क्या वेदर हमारा साथ देने वाला है, नहीं देने वाला है, वीकेंड को और क्या क्या होने वाला है, बिकॉज अभी पीक समर एक्टिविटीज चल रही है, तो वी हैव ऑल दोज थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। सो या, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आई एम गोना बी कीपिंग यू अपडेटेड। ट्रायंगल में और क्या क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमें पता चलने वाला है। तो या, वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उसके साथ साथ आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने, ये बढ़िया सा कॉम्बिनेशन तो आपको एक्सपीरियंस और एंजॉय करने मिलने वाला है। And for that, all you have to do is just download हमारी app, in the sense कि आप यहाँ पे तो हमें सुन ही रहे हैं, but आप भी अगर download कर लेते हैं तो एक uninterrupted बढ़िया सा experience रहेगा। So app download कर लीजिए, it is available on both App Store and Play Store by the name Radio Naira USA, very easy to download and very easy to use, and then आप हमें कहीं से भी सुन सकते हैं, very easy in general. So do that, have fun with it, and बाकी अभी तो आई हूँ और भी बातें करेंगे, इसीलिए कहीं मैं चाहिए सुनते रहिए नायरा रैली ट्रम्प के साथ।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। वेल, दिस वीकेंड इज गोना बी मोस्टली सनी, व्हिच इज अ गुड थिंग, बट यस, उसके साथ साथ वी हैव अ पॉसिबिलिटी फॉर अ फ्यू ब्रीफ शावर्स एज वेल। इट इज जस्ट गोना बी एक हॉट और मगी वीकेंड जो हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है, एंड हीट इंडेक्स जो है इट इज गोना बी क्लाइंबिंग टू ट्रिपल डिजिट्स बाय संडे। सो एकदम पीक समर टेम्परेचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बारिश भी रहेगी। सो एकदम प्रॉपर समर वेदर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। टेम्परेचर्स आर गोना बी इन द लो टू मिड 90s ऑल वीकेंड लॉन्ग। आज के बारिश के चांसेस के बारे में अगर बात करें तो वी हैव ओनली अ 20% चांस ऑफ स्टॉर्म्स। हाइज आर गोना बी इन द लो 90s एंड हीट इंडेक्स अराउंड 102 है। उसके बाद कल परसों अगर हम देखें तो हाइज आर गोना बी अराउंड लो टू मिड 90s, एंड कल परसों हीट इंडेक्स जो है वो एकदम 105 तक पहुंचने वाला है। एंड दिस इज वॉट वी आर गोना बी एक्सपीरियंसिंग, कि गर्मी बहुत रहने वाली है इन जनरल। अब ये जो स्टॉर्मी पैटर्न हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके चलते वी आर गोना बी एक्सपीरियंसिंग मोर हीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रिपल डिजिट के हीट इंडेक्सेस, एंड इट इज बिकॉज ऑफ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द ईस्ट ओवर द अटलांटिक ओवर द नेक्स्ट हैंडफुल ऑफ डेज, जिसके चलते हमें ओवरऑल ह्यूमिड कंडीशंस एंड ऐसे भयानक टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस करने मिलने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान कीजिए, बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, पानी पीते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, एंड जस्ट यू नो स्टे सेफ व्हाइल यू नो गोइंग आउट इन जनरल। सुनते रहिए नायरा राली ड्रम के साथ।

0: हेलो हेलो, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम, पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। अभी कल परसों की बात थी, पैनिक बेसिकली सेट इन फॉर सम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जब एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर ऑन अ वीक काउंटी स्कूल बस राउट पुल्ड ओवर वाइल टेकिंग चिल्ड्रन होम। एंड स्कूल ऑफिशियल्स को जब पूछा गया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा दैट द ड्राइवर ऑन मिडिल क्रीक एलिमेंट्री स्कूल का राउट 4 हैड ट्रबल नेविगेटिंग द राउट एंड देन ही स्टॉप टू कन्फर्म डायरेक्शंस। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड ने कहा दैट द ड्राइवर हैड मिस्ड सेवरल स्टॉप्स। तो वो मतलब बच्चे भी थोड़े से डर गए थे कि अरे ये ड्राइवर तो रुक ही नहीं रहा है, पेरेंट्स भी थोड़े से डर गए थे कि अरे ये ड्राइवर तो रुक ही नहीं रहा है। एंड सम पेरेंट्स देन नोटिस थ्रू द ऐप, द बस ऐप, दैट द बस हैड स्टॉप्ड एंड वेंट टू पिक अप देयर चिल्ड्रन वहां पे जहां पे बस रुकी थी, बिकॉज दे वर ऑब्वियसली कंसर्न कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सो पेरेंट्स सेड दैट द ड्राइवर रिफ्यूज टू टर्न अराउंड प्रॉम्प्टिंग एटलीस्ट वन चाइल्ड टू कॉल हिज फैमिली। उसके बाद फिर पुलिस भी आए थे एंड पेरेंट्स सेड दैट ऑल स्टूडेंट्स वर अकाउंटेड फॉर। सो सम स्टूडेंट्स वर देन टेकन बैक टू द स्कूल टू बी पिक्ड अप बाय देयर फैमिलीज एंड बाकी जो पेरेंट्स वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे उन्होंने अपने बच्चों को लिया और वो वहां से निकल गए। सो द स्कूल देन अपोलोजाइज फॉर द डिले इन एन ईमेल टू द पेरेंट्स एंड उन्होंने कहा कि यू नो बेसिकली द ड्राइवर वॉज अ लिटल बिट कन्फ्यूज अबाउट द डायरेक्शन, इसलिए वो रुक गया था। एंड द स्कूल इज नाउ सेइंग दैट इट इज रिव्यूइंग द इंसिडेंट टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप्स कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। बट फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है कि ये रिसेंटली हुआ एंड फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेफ, कुछ नहीं हुआ है बच्चों को। बट या दिस इज अ लिटल बिट ऑफ एक अलार्मिंग इंसिडेंट जिसके ऊपर अभी एक्ट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी हाउ द स्कूल गोज बाय इट। हॉली स्प्रिंग्स की पुलिस ने भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनके तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषा के साथ।
1: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में, हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी।

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. रैली की जो डिजाइन रिव्यू कमीशन है, उन्होंने कल डिसाइड किया दैट देयर नॉट गना बी वोटिंग ऑन प्लान्स फॉर अ प्रपोज्ड 15 स्टोरी टावर इन नॉर्थ हिल्स जो लैसेटर मिल रोड के पास है एंड इंटर स्टेट 440 के पास भी है. सो कल की जो उनकी मीटिंग थी, इट लास्टेड रफली अराउंड 4 आवर्स. 4 घंटे वहां पे कमिश्नर्स कंसिडर्ड वेदर टू अलाउ द प्रपोज्ड प्लान्स टू मूव फॉरवर्ड और नॉट. अब अकॉर्डिंग टू सिटी डॉक्यूमेंट्स, ये जो रियल्टी है बेसिकली इसके पीछे जो काम करने वाली फर्म है, दे रिक्वेस्टेड दैट द सिटी वेव सर्टन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस 15 स्टोरी मिक्स यूज बिल्डिंग जिसको वो लोग नाम देने वाले थे नॉर्थ हिल स्टार द सेकेंड. एंड कमिश्नर्स ने कहा दैट दे वॉन्टेड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस फर्म बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, स्पेसिफिकली साइटिंग द नीड फॉर अ शेड स्टडी. सो नॉर्थ हिल्स के रेसिडेंट्स जो है, देन दे हायर्ड लीगल काउंसिल ओवर द प्रपोजल. उन्होंने कहा दैट द टावर वुड अफेक्ट द व्यू फ्रॉम हर फ्रंट डोर एंड कास्ट एडिशनल शेड ऑन द एरिया. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है एंड एक्चुअली दैट प्रोजेक्ट यू नो कम्स टू फ्रूएशन. सो द कमिश्नर बेसिकली बैठे, उन्होंने डिस्कस किया क्या क्या हो सकता है. दे ऑल्सो डिस्कस हाउ मच ऑफ द बिल्डिंग वुड बी ट्रांसपेरेंट पर्टिकुलरली एट स्ट्रीट लेवल. सिटी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इट रिक्वायर्स अ सर्टन परसेंटेज ऑफ इस बिल्डिंग्स फसाद टू इंक्लूड ग्लास और विंडोज टू मीट ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं. सो द डिस्कशन देन सेंटर्ड ऑन अ लोडिंग डॉक व्हिच वाज प्लान्ड फॉर द साइड ऑफ द बिल्डिंग क्लोजेस्ट टू द लैसेटर मिल रोड. सो बेसिकली उन्होंने अब वोट देना ही पॉज कर दिया है, इज व्हाट दे हैव सेड दैट लाइक वी आर गोना बी नीडिंग मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर वोटिंग एंड जब तक वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है हम अप्रूवल के लिए वोट नहीं देंगे. सो या दैट इज वेयर दे आर स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ. लेट्स सी हाउ दिस गोज. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: हेलो जी नमस्ते वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं आयुषी आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. फार्मविल टाउन कमिश्नर्स दिस वीक वोटेड यूनानिमसली टू अप्रूव एक 12 मंथ फ्रीज ऑन डेटा सेंटर्स. एंड ये जो 12 महीने का टाइम पीरियड रहेगा उसमें कहा दैट द टाउन स्टाफ विल रिव्यू ऑर्डिनेंस लैंग्वेज एंड डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिक लैंड यूजेस. नाउ दिस वोट फॉलोड अ पब्लिक हियरिंग ड्यूरिंग द बोर्ड्स रेगुलर मीटिंग जहां पे रेसिडेंट्स आए थे. दे स्पोक आउट अगेंस्ट द पोटेंशियल डेटा सेंटर एंड दे वर ऑब्वियसली कंसर्न कि अगर डेटा सेंटर आ रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्स रहेंगे. टाउन मैनेजर ने कहा दैट द मेजर वॉज प्रोएक्टिव एंड दैट नो डेटा सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द टाउन काउंसिल. उसके पहले हमने ये 12 महीने का पॉज लगा दिया है एंड उस दरमियान हम बैठ के एक्चुअली एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएंगे कि अगर डेटा सेंटर्स आके जाके बाय चांस बनते भी है तो व्हाट रिक्वायरमेंट्स दे शुड मीट. ईस्ट एनर्जी रिन्यूएबल्स जो है दे आर प्लानिंग टू क्रिएट एक नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स इन ईस्ट नॉर्थ कैरोलिना अंडर द नेम ईस्ट एनर्जी डेटा एंड उनका ऑलरेडी एक हेडक्वार्टर है फार्मविल में. द कंपनी प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द डेटा सेंटर टू द टाउन काउंसिल इन फेब्रुअरी एंड देन रेसिडेंट्स जो है दे वॉइस देयर कंसर्न्स ओवर एनर्जी rising energy costs associated with the data centers and aise mein fir you know town council ne decide kar liya ki nahi nahi hum ruk jate hain. We are just going to be putting all of the plans related to data centers on a 12 month ka freeze and hum tab tak ek ordinance language banayenge ek framework banayenge jo fir data centers ko follow karne padenge agar data centers approve ho jate hain to. So that is still a good thing, that is still a good measure, proactive measure is what they are saying. Stay tuned mahayushab ke sath.

कल भैया बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हमारे ट्रायंगल में. आपने ट्यूनियन किया है नायरा राली ड्रम पकादेसी पकालोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स एंड जो वोटिंग एक्सेस एडवोकेट्स है दे बेसिकली गैदर्ड यस्टरडे आउटसाइड द नॉर्थ कैरोलिना जनरल असेंबली एंड इट वॉज डेज आफ्टर द रिपब्लिकन लेड स्टेट लेजिस्लेचर वोटेड टू कट early voting hours in some elections, ramp up purges of voting rolls and unko election laws mein bhi thode se kuch changes karne the. So iske jo supporters hai of this republican backed house bill 958 unka aise kehna hai that the legislation would improve election integrity and reduce the cost of administration. एंड इसकी जो अपोनेंट्स है जिसमें डेमोक्रेट्स भी आते हैं अपोनेंट्स में एंड देर आर वोटिंग ग्रुप्स जैसे कि द नॉर्थ कैरोलिना वोटर प्रोटेक्शन अलायंस एंड केयर, उनका ऐसे कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इट वुड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द बैलेट एंड वीकन पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शंस. सो द ग्रुप्स हेल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस यस्टरडे टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 बिकमिंग लॉ एंड दे हाईलाइटेड कंसर्न्स अबाउट वोटिंग एक्सेस अक्रॉस द स्टेट कि फिलहाल क्या सिचुएशन है एंड ये बिल जो अगर आ भी जाता है तो क्या होगा क्या नहीं. सो दे बेसिकली रैलीड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इलेक्शन बिल एंड उसमें हमारे जो गवर्नर है ही देन प्लेज टू वीटो. सो अब वो भी देखना है कि क्या होता है. नाउ ही मतलब जो भी इसका डिसीजन है इस बिल का वो हमारे गवर्नर के पास है. ही इज ऑलरेडी वाउड टू वीटो इट आर्ग्यूइंग दैट इट वुड मेक वोटिंग हार्डर एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी इन इलेक्शंस. सो दैट इज व्हाई इट इज अ बिग थिंग इन द सेंस कि वो हमारे आने वाले वोटिंग को बेसिकली डिफाइन करेगा कि हम वोट कैसे करते हैं हम में से बहुत सारे लोग एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इस पर्टिकुलर बिल का क्या होता है एंड अगर वीटो हो भी जाता है तो आगे क्या होता है वो भी हमें देखना है. होपिंग फॉर द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी के साथ.

0: साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana, on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। Everyday open between 5 p.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 Davies Drive, Morrisville. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
5: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल।

वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पकारीसी पकालोकल महायुषी एन आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. वेल दिस इज अ बिग थिंग दैट द एफडीए अप्रूव द यूनाइटेड स्टेट्स का पहला mRNA based flu vaccine for adults 50 and older, ऐसा जो कंपनी है मोडर्ना उन्होंने कहा है. अब फ्लू अभी भी एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज है. जब भी फ्लू सीजन आता है लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है कि भैया आपका जो वैक्सीन है वो ले लीजिए. उसके बावजूद बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, फिर फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं. एंड ऐसे में ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारे घर के सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, इन द सेंस कि उनका वैक्सीन सबसे पहले लगवा लें, उनको इफेक्टिव वैक्सीन दें. सो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन रहेगा इट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग एक इंपॉर्टेंट न्यू ऑप्शन फॉर ऑल द सीनियर्स इन दिस कंट्री. एंड दिस अप्रूवल आल्सो रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग पोटेंशियल ऑफ द mRNA प्लेटफॉर्म टू हेल्प एड्रेस इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जिसके चलते उनको नए नए साइंटिफिक इनोवेशन के बारे में पता चला है. नाउ दिस पर्टिकुलर न्यू वैक्सीन वाज फाउंड टू बी अबाउट 27% मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द 2024-25 रेस्पिरेटरी वायरस सीजन देन द स्टैंडर्ड फ्लू शॉट्स जो हम यूजुअली लेते हैं. इस स्टडी में उन्होंने अराउंड 40,000 अडल्ट्स को एनरोल किया था हुआ 50 इयर्स एंड ओल्डर. अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है दे इंक्लूडेड इंजेक्शन साइट रिएक्शंस जैसे कि थोड़ा सा पेन, टेंडरनेस, कुछ कुछ पेशेंट्स में स्वोलन लिम्फ नोड्स, फटीक, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन, नौशिया और वॉमिटिंग या फिर फीवर. बट फॉर फ्लू वैक्सीन जो ऑलरेडी मार्केट में है एक्सपर्ट्स आर सिलेक्टिंग फ्लू स्ट्रेन फॉर ईच फॉल के सीजनल वैक्सीन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फेब्रुवरी. एंड ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन रहेगा mRNA फ्लू वैक्सीन इट एक्चुअली रिक्वायर्स लेस टाइम बिटवीन स्ट्रेन सिलेक्शन एंड पब्लिक सर्कुलेशन. सो वो पराग से मार्केट में आ भी जाएगा, पराग से उसको लोग ले भी पाएंगे एंड सेफ रहेंगे. सो इट कुड बेसिकली अलाउ फॉर अ क्लोजर मैच बिटवीन द इम्यूनिटी कन्फर्ड बाय वैक्सीन एंड द सीजन सर्क्यूलेटिंग इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन. सो इट इज अ विन ऐसा हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्वियसली. सो या स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: डैम हिज मेडन टाइटल एंड बहुत सारा कैश प्राइज भी. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल में हुआ शेन. आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. ग्रैंड मास्टर प्रगनंदा रमेश बाबू वन हिज मेडन टाइटल एंड उसके साथ $50,000 इन द 2026 स्टेन्ड लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स यस्टरडे. एंड उनके आगे जो उनके ओपोनेंट थे ग्रैंड मास्टर जवोखिर सिंदारोव ही केम विद इन जस्ट अ हाफ पॉइंट ऑफ कैचिंग हिम. बट प्रगानंदा स्टार्टिंग से ही आगे थे. ही एक्चुअली नेवर लेट गो ऑफ द लीड इन ऑल फाइव डेज ऑफ द इवेंट एंड ही वन विथ अ राउंड टू स्पेयर व्हेन ही हेल्ड अ पॉन डाउन एंड गेम अगेंस्ट सिंदारोव इन द पेन अल्टीमेट राउंड. सो अब नेक्स्ट इवेंट के लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना है बिकॉज जो अगला इवेंट रहेगा दैट इज द 2026 सिंकफील्ड कप which is the last event before the 2026 Grand Chess Tour Finals is now starting abhi Monday se, that is August 10th se. So wahan pe fir se ek baar sare grandmasters jama honge and ek dusre ke against khelenge and fir aage hame dekhna hai ki kaun jata hai kaun nahi. But congratulations to Pragananda, it is his first to win his first title bhaiya bahut sare cash prize ke sath. And yeah, we are obviously looking forward to see him in the upcoming tournaments as well. स्टेडियम में हुआ यूशी आपकी
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल.
2: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर.
3: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली. Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
4: Witness the phenomenon, the passion,

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम, पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। एक चीज तो हमें पता चली है कि ईरान एंड ओमान आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग एक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर कमर्शियल शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ऐसा को तेहरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। दूसरी जगह हमें यह पता चला है कि द कॉन्फ्लिक्ट एंड द वॉर इज जस्ट वाइडनिंग। सऊदी अरेबिया इज बेसिकली यू नो जस्ट ब्रेसिंग, दे आर एंटिसिपेटिंग मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ऑन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स बाय इराकी मिलिशियाज वर्किंग विथ ईरान बैग्ड हाउथी रिबल्स, ऐसा एक सऊदी ऑफिशियल्स ने कहा है। एंड दे आर साइटिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दे आर लाइक कि हमें ये बहुत अलग अलग सोर्सेज से पता चला है, सो वी आर गेटिंग रेडी ऑन आर साइड। उसके बाद ये जो हॉर्मूज डील है, दिस अग्रीमेंट वुड एक्चुअली नॉट ऑटोमेटिकली रीओपन द वॉटर वे, बट दे माइट कम टू एक ऐसा डील, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें यू नो लोगों को थोड़ा उसका फायदा हो रहा है। ईरान हैज ऑल्सो डिनाइड एनी डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वहां पे अभी भी दरवाजा बंद है। अभी भी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एक जगह हमें पता चल रहा है कि ट्रंप जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बैठ के डील के बारे में बात करने वाले हैं। ईरान ने कहा है कि भैया हमारे तरफ से कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रहे हैं। President Trump has pushed back on reports of the Pentagon's dwindling munitions stockpile, claiming कि नहीं US has massive amounts, but acknowledged ki weapon supplies are tighter. So, yeah, here we are. These are the latest updates jo hume as of aaj subah mile hai related to the conflict and the war. And dekhte hai kya hota hai kal. Stay tuned, main hu Ayushi aapke saath.

आज जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होने वाला है. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुष सेन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. इट इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट ऑफिशियल जॉब्स रिपोर्ट जो आज रिलीज होगा. एंड ऑब्वियसली उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारे एनालिसिस किए गए हैं कि भैया ये आज के जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चल सकता है. सो इकोनॉमिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग इट टू शो दैट hiring picked up in July and that the unemployment rate held steady at 4.2%. Abhi jo economists filhal estimate kar rahe hain wo aisa hai ki monthly employment gains should be around 97,500 jobs and it would overall mark an increase from June ka lower than expected mahina. And the bulk of pichle mahine ka employment growth is likely to come from one sector and that is the healthcare and social assistance. Aaj ka report will also likely underscore that the job market remains stable but in a low flow state with non-healthcare hiring a little sluggish and uske baad jo unemployment rate hai wo largely unchanged hai, usko aisa kuch nahi hua hai. So they are like ki it is kind of a low hire low fire situation jo filhal hum dekh rahe hain and it still can't like capture all the inner workings and lived experiences but filhal overall jo ek जनरल बातें चल रही है वो इसके रिलेटेड चल रही है. ऐसे में अमेरिकन्स आर नेविगेटिंग एक लेबर मार्केट विद अपॉर्चुनिटीज फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल, साइडलाइनिंग जॉब सीकर्स एंड लीविंग मेनी ऑफ द यंगेस्ट जॉब हंटर्स विदाउट द फाउंडेशनल रोल्स एंड स्किल्स नीडेड फॉर देयर फ्यूचर्स. एंड अब आज देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या पता चलता है. बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल रिपोर्ट टू सी कि हम जुलाई महीने में कितने पानी में थे एंड कितने नहीं. सो या स्टे

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: अब यहाँ पे भी एक रेस चल रही है, आई वाज लाइक ओके, आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम, पक्का देसी पक्का लोकल, मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। उसी दिन हम बात कर रहे थे कि अब स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स जाएंगे उसके बारे में एक रेस चल रही है। मैं ऐसी थी कि अच्छा यहाँ पे भी कंपटीशन हो सकती है, हमें से नहीं पता था, अपेरेंटली है। देर इज़ वन मोर जगह जहाँ पे अब कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड कमिंग है, एंड दैट इज़ द ओशन। सो इन द पास्ट ईयर्स, फ्यू ईयर्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें दे आर ट्राइंग टू यू नो कम अप विथ हैबिटेट्स जो अंडर वाटर एकदम सीमलेसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड इन लाइक द पास्ट ईयर्स, क्रू अबोर्ड द एक्वेरियस रीफ बेस विच इज ऑफ फ्लोरिडा रिपोर्टेड दैट लीविंग द हैबिटेट टू कंडक्ट देयर बिजनेस स्विमिंग टू एन अंडर वाटर आउटहाउस फॉर प्राइवेसी, उनका एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस था एंड कैसा नहीं। सो ऑब्वियसली लोकल्स जो है यानी कि फिशेस, उनको बाकी कुछ नहीं पता था, बट ओवरऑल जो ये हैबिटेट है, इट नाउ बोस्ट्स टू टॉयलेट्स एंड नो आउट हाउस रेस्ट रूम, एंड बाकी उनके पास सब कुछ है, लिटरली सब कुछ, एंड दे आर नाउ कंसिडर्ड एज अ बिग कंटेंडर टू द थ्रोन। किसका थ्रोन? तो भैया अंडर वाटर कौन जाके रह सकता है, अंडर वाटर कौन एक सक्सेसफुल हैबिटेट क्रिएट कर सकता है, एंड देयर इज नाउ अ न्यू अंडर वाटर बेसिन टंग। एंड उनके साथ साथ अब मतलब उनके पीछे कॉम्पिटिशन्स भी आएंगी बेसिकली टू मेक श्योर कि नहीं नहीं अब हमारा भी एक अंडर वाटर स्टेशन रहेगा। सो द कंपनी बिहाइंड दिस स्टेशन इज नाउ कीन टू शो ऑफ उनका प्लम्बिंग, उनके बाकी रेस्ट रूम फैसिलिटीज एंड बाकी सारी चीज़ें, एंड दे आर लाइक कि या वी आर गोना बी मेकिंग इट अ बिग डील बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ अ बिग डील अमंग साइंटिस्ट्स हु हैव रिलाइड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एज द ओनली ऑपरेशनल अंडर वाटर रिसर्च लेबॉरेटरी एंड हैबिटेट इन द वर्ल्ड। तो दे आर लाइक इट इज़ अ बिग डील, एंड अब मोस्ट प्रॉब्ली उनके पीछे कंटेंडर्स भी आएंगे। सो देर इज़ नाउ अ स्पेस, देर इज़ नाउ अ रेस टू द बॉटम ऑफ द ओशन एज वेल। या स्टेडियम में हुआ आयुषी आपके साथ।

हेलो जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पर कदेसी पकालो कल में हुआ यूशियन. आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. इट इज़ फ्राइडे. फ्राइडे के हिसाब से आज इतने कुछ एक्साइटिंग ओकेजन्स नहीं हैं, पर यू कैन स्टिल enjoy raspberries and cream because it is National Raspberries and Cream Day. And then today we have International Beer Day. So already हमारे यहाँ पे बहुत सारी local breweries हैं जो उनके अलग अलग events and festivals organize करते रहते हैं, and it is all about obviously supporting हमारे यहाँ के सारे local breweries जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं actually अगर हम कहें तो. एंड आज का दिन इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड द परफेक्ट ओकेजन टू गो एंड सपोर्ट हमारे यहाँ के लोकल ब्रूरीज जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें ब्रू कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए. एंड इंटरनेशनल बियर डे आप अकॉर्डिंगली सेलिब्रेट कर सकते हैं. आज नेशनल वाटर बलून डे है, नेशनल हैंडलूम डे भी है, आज उसके साथ साथ नेशनल लाइट हाउस डे है एंड प्रोफेशनल स्पीकर्स डे भी है. एंड इट इज़ ऑब्वियसली अ बिग टास्क इन द सेंस कि यहाँ पे बैठ के तो हमें बहुत ही मतलब आसान लगता है, बट जब आप एक्चुअली स्टेज पे खड़े होकर माइक के पीछे खड़े रहते हैं तो पसीने छूट जाते हैं बहुत सारे लोगों के. बट या देर आर सम पीपल जो बस लाइक स्टेज पे जाते एकदम मतलब उनका करिश्मा ऑन हो जाता है. दे आर जस्ट देयर टू कैप्टिवेट पीपल. एंड आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके स्किल को सेलिब्रेट कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो लर्न दिस बाय द वे, उसको प्रैक्टिस लगती है थोड़ी सी, बट या यू कैन ऑब्वियसली एंजॉय दिस पर्टिकुलर ओकेजन एज वेल. ये आज के ओकेजन्स हैं, हैव फन विद देम. एंड सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, हम आयुष के साथ.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. टुनाइट वी हैव मूवी नाइट एट राली ब्रूइंग. दे आर गोना बी शोइंग टॉप गन ऑन द बिग स्क्रीन एंड वहां पे लोकल बियर कॉकटेल्स एंड स्नैक ऑप्शंस रहेंगे. आज इंटरनेशनल बियर डे है तो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस. देन टुडे वी ऑल्सो हैव फर्स्ट फ्राइडे एट ओक सिटी ब्रूइंग. यू कैन गो एंड एंजॉय दैट एज वेल. टुडे वी ऑल्सो हैव टिम मैकग्रॉ एट कोस्टल क्रेडिट यूनियन म्यूजिक पार्क एट वॉलनट क्रीक. Then we have the big three tributes to Metallica, Slayer and Megadeth. Ye bhi aaj ho raha hai. Aaj the ultimate cat adoption party bhi hai. It is between 9 a.m. and 6 p.m. and it is at Safe Haven. So आप जाके बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ एक अडोरेबल फ्रेंड भी घर लेके आ सकते हैं. सो एवरी अडोप्टेबल कैट इज जस्ट लाइक $10 बिटवीन 9 a.m. एंड 6 p.m. तो आज आप यू नो टाइम निकाल के जाके अडॉप्ट करके ला सकते हैं. देन दे हैव ऑल्सो वेव्ड अडॉप्शन फीस एट SPCA ऑफ वेक काउंटी. द शेल्टर इज गोना बी ओपन ईच डे फ्रॉम 11 a.m. टू 6 p.m. दिस वीकेंड, दैट इज 7th, 8th एंड 9th August. तो इस वीकेंड आप वो भी जाके कर सकते हैं. उसके साथ साथ वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग टुमारो. वी हैव द ट्राइंगल वेडिंग शो, फिट प्लस फ्लो एट फेंटन, ट्राइंगल नेटिव अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल, NC जर्क फेस्टिवल, गार्लिक फेस्ट है. Then on Sunday we have Repticon Rally, tomorrow and on Sunday. Then we have the Rally Comic Book Show and Deep River Brewing Food Truck Rodeo. Then we have the market at Rally Ironworks tomorrow. On Sunday we have Black Farmers Market Rally. Then we have the Rally Underground Market as well. And tomorrow we also have Clayton Skate Night, Tournament for Special Olympics and Rally Rundown Downhill Mile as well. So, ये सारी चीज़ें आप overall plan करके enjoy कर सकते हैं this weekend. बस heat का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भैया गर्म बहुत होने वाला है. गर्मी in general बहुत होने वाली है. Stay tuned.

हेलो वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी. आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आई मीन दिस इज एक्चुअली एक ऐसी सर्फिंग कॉम्पिटिशन जो मैं बहुत बार देख सकती हूँ एंड आई वोंट गेट बोर ऑफ इट. इट इज द 10th एनुअल वर्ल्ड डॉग सर्फिंग चैम्पियनशिप एंड ऑब्वियसली इट अट्रैक्टेड द परफेक्ट द राइट क्राउड फॉर इट. सो नॉट जस्ट थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन स्पेक्टेटर्स वर देयर एट कैलिफोर्निया बीच और ऑब्वियसली सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए थे, पूरे रेडी होके आए थे. सो इट फीचर्ड 14 डॉग्स ऑफ ऑल साइजेस राइडिंग द वेव्स टू अटेम्प्ट टू विन प्राइजेस जैसे कि टॉवल, रोब्स, मेडल्स एंड प्लकार्ड्स. एंड या दे वर जज्ड ऑन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ उनका राइड, साइज ऑफ द वेव, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस, बैलेंस ऑब्वियसली, एंड इफ यू कैन डू सम ट्रिक्स तो यू कैन डू दैट एज वेल. सो लैब्राडोर रिट्रीवर नेम्ड रिपिन रोजी टुक टॉप प्राइज इन द लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी एज वेल एज इन द टैंडम स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग कॉम्पिटिशन अलॉन्ग साइड हर ओनर. उसके बाद फ्रेंच बुलडॉग ईजा वॉज नेम्ड द विनर इन द मीडियम कैटेगरी एंड अ मिक्सड ब्रीड नेम्ड ब्रैडली शॉर्ट बोर्ड कूपर टुक द टॉप स्पॉट अमंग द स्मॉल डॉग्स. And I was like कि यार ये एक बार actual in-person experience करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा. But yeah, all the participants were adorable as you can imagine and बस participate करने के लिए ही मेरे तरफ से उन सबको prizes है. So congratulations to each and every participant and congratulations to the winners as well. आप उसकी जाके videos देख सकते हैं, they are adorable. Yeah, for sure. Stay tuned, मैं हूँ आयुषी आपके साथ.

lot of rubber ducks. That is a lot of rubber ducks. Hello जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ट्रम्प पका देसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो अराउंड 90,000 रबर डक्स वर पोर्ड आउट ऑफ अ ट्रक एंड इन टू द शिकागो रिवर यस्टरडे एंड देन दे वर जस्ट लाइक यू नो बॉब द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द स्काई स्क्रेपर लाइन रिवर इन द एनुअल शिकागो डकी डर्बी जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हर साल रेज करती है फॉर चैरिटी. सो द ट्रक डम्प द डक्स फ्रॉम वन साइड ऑफ अ हाफ रेज्ड ब्रिज एंड उसके बाद ऑब्वियसली एक येल्लो पूल बन गया था इन द रिवर एंड डक्स फ्लोटेड फॉर अराउंड 15 मिनट्स बिफोर अ विनर एंड रनर अप वर प्लक्ड फ्रॉम द वाटर एंड उसके बाद या उनको फिर अकॉर्डिंगली उनके प्राइजेस दिए गए. सो लाइक इट ड्रॉस थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर साल. इट इज़ अ फंड रेजर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स इलिनॉय एंड हर साल वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. इट इज़ एक एनुअल इवेंट, लोगों को पसंद है एंड एट एन अकम्पनिंग फेस्टिवल पार्टिसिपेंट्स स्नैप्ड पिक्चर्स विद इन्फ्लेटेबल डक्स. दे डूडल्ड ऑन अ चॉक बोर्ड अंडर द प्रॉम्प्ट आई अडॉप्टेड डक बिकॉज एंड वो अपने अपने रीजन्स लिख रहे थे एंड देन सम वर ऑल्सो स्पोर्टिंग रबर डक प्रिंटेड शर्ट्स एज वेल. सो पीपल वर काइंड ऑफ एक्साइटेड, दे वर लाइक यू नो ये हमारा पहला डक कॉम्पिटिशन है एंड दिस इज लाइक अ स्पेशल ओलंपिक्स. दिस डकी डर्बी इज अ स्पेशल थिंग फॉर अस एंड हमने यहाँ पे आके बहुत मौज की. कुछ कुछ लोग जीते, कुछ कुछ नहीं. सो दिस ऑल्सो हैपन इन शिकागो yesterday वॉज अ वाइल्ड डे, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं. फॉर श्योर, फॉर श्योर. या स्टेडियम

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे थे जरा मुस्कुराओ. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू

इट इज जस्ट लाइक बहुत सारा गर्म पानी, बहुत सारा काढ़ा. अब मुझे थोड़ा सा उसका भी कंटाल आ गया है कि नहीं, मुझे काढ़ा नहीं पीना है. बट दैट इज द वे टू गो, अदरवाइज आई वोंट फील गुड. अदरवाइज मेरे गले की खिचखिच खत्म ही नहीं होगी. एंड या बहुत सारे लोजेंजेस ऑब्वियसली, उसके से ज्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो या आई एम गोइंग थ्रू दिस, बट डिस्पाइट दैट आई एम गोइंग टू बी मेकिंग श्योर दैट आई एंजॉय दिस वीकेंड, बिकॉज पिछले दो वीकेंड्स में इस बीमारी की वजह से एंजॉय नहीं कर पाई. तो आई एम गोइंग बी डूइंग दैट. यू ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली कि भैया हमें वीकेंड एंजॉय करना है कुछ भी करके. डू डू दैट, हैव फन दिस वीकेंड. बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM. बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ सुंदर दिवस है. एंड सी यू टुमारो. हैप्पी वीकेंड, बाय.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabri sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 49 AM and 99.9 FM, SD34, Telugu, Naira FM. हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week to many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

देखती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना।

0: हाँ यार, एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3 4 Telugu, Naira, same, and हूँ आपके अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड ऑल।
1: टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to your concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन करिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पकड़ देसी

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंटर. पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है. वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

Awesome Blossom Ghana, aapne suna on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira Fame. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूम्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. Can't miss the night under the light. Known as Mr. Saturday Night, Party is set to deliver an unforgettable show packed with the chart topping and topping with his high and energy performances. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इसकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन. पक्का देसी, पक्का लोकल.

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट्स दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local. My lucky day.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morris Ville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती, चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांदा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून. राचा बांदा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल सेंटर।
1: वेल आवर ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम SG4 49 एएम एंड 99.9 एफएम SG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल ड्यून्स एंड टॉक कहां धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है। हूं आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट एंड टॉक। वेल हमारा ट्रायंगल में ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है। द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द कोर्स जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट। This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendor their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पता देसी पता लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियमर ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रासी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to labyrinth tours to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो 9 पता देसी। हेलो, हेलो।

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira. आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूंस एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

यार विदाई जब भी होती है शादी में, इट्स लाइक सो इमोशनल टाइम, यू नो, हर कोई रो रहा होता है. बट आई डोंट गेट दिस, व्हाई पीपल क्राई? यार रोने का नहीं है. आपको पता है सुनील शेट्टी ने भी अपनी बेटी की विदाई में आंसू नहीं बहाए. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Sunil Shetty, in a recent interview with the Lalan Tap, revealed why he didn't cry during daughter Atish Shetty's bidai after her wedding to KL Rahul. He said, क्योंकि somewhere down the line एक जब अनसर्टेनिटी होती है ना जिंदगी में कि बिटिया जा कहाँ रही है, तो वो इमोशन निकल कर आते हैं. लेकिन हियर आई नो शी इज गोइंग टू अ हैप्पियर प्लेस. ही आरिद तात्या लेटर आस्क्ड हिम अबाउट नॉट क्राइंग एंड ही एक्सप्लेन ही वॉज काम बिकॉज ही ट्रस्टेड केएल राहुल टू टेक केयर ऑफ हर ब्यूटिफुली एंड ही एंड हैड फुल कॉन्फिडेंस इन देयर बॉन्ड. सुनील ऑल्सो एम्फसाइज दैट दे ऑलवेज होल्ड देयर डॉटर टू मैरी समवन हु वुड बी हैप्पी विद फॉर लाइफ, सेइंग Somebody you are going to be happy with for the rest of your life. More than anything else, baki there is no restriction to anything. See, such a nice thing to say, man. Jab aap confirm hote hai ki aapki beti har hal mein khush rahegi, to why to cry? It's just part of the life, you know. Nobody should cry in vidai. I don't like this thing. Well, stay tuned for more. I'll be back. Only

The first thing he said to me out of all the beautiful things was, you got to lose the muscles. I was like, yeah, I can do it. I can do that. It is easier for me to look like that. And he was like, no, no, no. Ishan, please, I don't want to see a single sinew in your body. Get rid of it all. I was just coming off the Royals where it was a job requirement. That was a physical part of it, said Ishan while talking to journalist Suchitra Tyagi. Dekhiye, ek कैरेक्टर में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक्टर्स को. कभी बॉडी बनानी पड़ती है, कभी बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कभी मोटा होना है, कभी पतला होना है. मतलब एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से उनको गुजरना पड़ता है. इट्स लाइक होल वर्क, यू नो, एंड नॉर्मल लोगों का कर पाना काफ़ी मुश्किल है यार. इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू डू ऑल दीज थिंग्स, मैन. हैट्स ऑफ. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नाइट.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो पाठशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

Hello everyone, this is Jyoti, your dost and host on Radio Naira 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM. आज है फ्राइडे, मैं हूँ आपके साथ और आज की ये शाम है आप सबकी मेरे नाम, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरी शाम है आप सबके नाम। आज हम बात करेंगे कुछ कमबैक्स की। इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ी सी रिसर्च करी मेरी पूरी टीम ने, विच इज़ मी एंड आई, मी एंड माई सेल्फ, बहुत लोग थे। कमबैक्स ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन बॉलीवुड जो एक बारी डिसअपियर हो गए थे एंड अचानक से वापस आ गए, वेदर इट वॉज अ गुड थिंग, बैड थिंग और हाउ एवर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड के सोल्जर की। यू गाइज कैन कंटिन्यू टू गैस हु इट इज, बट आई नो दैट दिस गाय ही डिसअपियर्ड फॉर ईयर्स विदाउट इवन अ सिंगल मेजर फिल्म, and the industry moved on, new faces took over and he became just a memory. However, he was born into a legendary film family and still when he was feeling invisible he went into obviously depression. He used to drink a lot, jo unhone apni reels mein bataya. He saw the world actually forget him and instead of super duper breaking down, he rebuilt himself quietly, mentally, physically, spiritually. So आप guess कर सकते हैं कौन सा soldier है ये जो मीठी मीठी बातें बोलकर दिल मेरा चुरा ले गया। Yes, we are talking about Bobby Deol, belongs to the Deol family and still he disappeared. But I'm glad that he's back and we'll talk a little bit more about that. But before that, let's play some awesome numbers. Are you guys ready? 5 to 7. Just bringing great numbers for you guys to just step yourselves on the floor. So stay tuned, do not go anywhere, and here you go.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Hey guys, welcome back. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नारा 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM। हम बात कर रहे हैं मिस मर्दानी, हमारी मर्दानी की, द लाइनेस रोर्स, और उसके कमबैक की। सो हर कमबैक वाज नॉट ग्लैमरस, जस्ट लाइक बॉबी ड्योल्स, ही वाज सुपर एक्सप्लोसिव और इनका था फियर्स। मर्दानी शोड रानी एज अ वॉरियर नॉट अ हीरोइन, एंड व्हेन रानी रिटर्न्ड एज शिवाजी रॉय, शी डिडंट एक्ट, शी रोट। हर परफॉर्मेंस वाज रॉ, फियरलेस एंड अनफॉरगेटेबल। डिड यू लाइक दैट? I think I like that Mardani part 1, 2 and 3, all of them. I think 3 tak hi hua abhi. But it was really fun watching her, you know, in action like that. But I personally liked her cute also in those 2000s, you know, ye jo movies thi. I really liked her because especially in this song, Pia, Pia, oh Pia, Pia. I think they both looked really unidentical twins. Preeti and Rani, and it was fun watching her in those roles as well, romantic, but I think she totally nailed it with this action, and her comeback definitely was super awesome, super fierce, so it was great. Anyway, aapko which part of Mardani, I mean Rani Mukherjee, did you guys like the most? Whether you liked her more like, oh I love you, or more like, eh, दूर रहे मेरे से, यू नो, विच कलरफुल एक्ट वुड यू रादर सी रानी ऑन द स्क्रीन? एनी वे, यू गाइज हैव टाइम, गिव मी कॉल एंड सी इफ यू मे बी एबल टू विन प्रभु देवास टिकट 9199998595। चलिए लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स बिफोर द टॉप ऑफ द आवर, एंड हियर यू गाइज गो नाउ।

जाएगा। ये भाई मैं पिंकी में हूँ कि वो एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, आई एम द पैरिस मदर
1: हार्ट बीट।

0: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश, आपके इस ड्राइविंग को और भी खुशनुमा और रिलैक्सिंग बनाने का जिम्मा जो है वो मैंने ले रखा है। एंड पूरे हफ्ते की बिजी स्केड्यूल और ऑफिस का प्रेशर अब धीरे धीरे थमने को है। फ्राइडे है और वीकेंड की खूबसूरत वाइब्स अभी से आप लोग जो है महसूस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग इस समय हाईवे पर है, अपने गाड़ियों की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सीट बेल्ट बांधिए और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए। आपके इस शाम को बहुत ब्यूटीफुल बनाने का जिम्मा भी मैंने ही ले रखा है। तो सुनते हैं अगला एक गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पहली बड़ी अपडेट हमारे अपने रैली शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर स्काईलाइन से आ रही है। आज नॉर्थ हिल्स इलाके में एक नई और बेहद भव्य इमारत यानी एक बड़े हाई राइज टावर के अगले निर्माण चरणों को अंतिम कानूनी मंजूरी देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग और वोटिंग कर रहा है। WRAL नॉर्थ हिल्स टावर वोट, ये प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी समय से स्थानीय प्रशासन और डेवलपर के बीच चर्चा में था और अगर आज इसे हरी झंडी मिल जाती है तो नॉर्थ हिल्स का पूरा नज़ारा बदल जाएगा, जहां रहने के लिए प्रीमियम अपार्टमेंट्स और कमर्शियल हब के बेहतरीन नए ऑप्शन खुलेंगे, तो हमारे ट्रायंगल एरिया के बिजनेस को एक नई ऊँचाई पर ये लेके जाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मतलब ये प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिल जाती है तो नथिंग इज लाइक दैट। चलते चलते बात करते हैं आज रात के मौसम की। तो हमारे WRAL वेदर स्टेशन और NC वेदर बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार आज रात भी आसमान में काफी घने बादल छाएंगे और कुछ चुनिंदा इलाकों में 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। इसलिए जितने भी लोग इस समय हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें और सुरक्षित घर पहुंचे। इन बड़ी खबरों के बाद आपके मंडे टू थर्सडे के पूरे स्ट्रेस को दूर करने के लिए और आपकी शाम को बेहतरीन संगीत में डुबोने के लिए सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को ये अगला गाना। तो बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट्स ये हमारा शो चलता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: एंजॉय किया आपने गाना एंड गाना था वाकई में काफी ब्यूटीफुल। वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और सबको प्यार भरा वेलकम मेरी तरफ से। दूसरे घंटे में अब समय हो गया है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की दुनिया की बड़ी हलचल का, फिल्मी गलियारों की हर एक इनसाइड गपशप, एक नए ट्रेलर्स और अपने चहेते सितारों की लाइफस्टाइल से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट के लिए आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा। और रेडियो नायरा जो हमारा एप्लीकेशन है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा एंड उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक दुनिया के किसी भी कोने में। बस आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: तो फ्रेंड्स, आज बॉलीवुड से जो सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर आ रही है, उसने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पूरे 19 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इमरान हाशमी के फैंस के लिए आखिरकार सबसे बड़ा दिन आ गया है। 6 अगस्त 2026 को फिल्म आवारापन 2 का ऑफिशियल और बेहद कड़क ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इमरान एक बार फिर अपने आइकॉनिक और जो उनका लाइक स्टाइल है, शिवम पंडित के रूप में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस बार फिल्म में उनके साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर आते ही यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोर रहा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो।